सगल द्वार को छाड़ कै गहु तुहारो द्वार बाहीं गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद एको अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दों तां गावो हरी केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरस स्वामी सो क्यों मनहु बिसारे कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाज शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन अवस्या जिन इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित कर सपागा शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लाके कह नानक तां सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर हया पार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सत

निभावै। कहाँ बुझार तु बुझे डूरा, निस कहिया तौ समझ है पूरा। कहाँ बिसन पद गावै गोंग, जतन करे तौ पी सुर भंग। कहाँ पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तू हाँ उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती कर, नानक तुमरी कृपा तर। संग सहाई सो आवै न चीत, जो बहराई ता सो प्रीत। बलुआ के ग्रह पीतर वसा, आनंद केल माया रंग रसा। दृढ़ कर मन मन प्रतीत, काल न आवै मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ ध्रोह। याहू जुगत बेहाने कई जन्म, नानक राख लेहो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पहरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कन्हेरे। कोई न जाना तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुम रह सुतारी, तुम ते हुए सुआज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक दिन हार पव छोड़ कै, लग है आन सुहाय। नानक कहु ना सी जाई, बिन नाव पत जाय। अष्टपदी दास वस्तु ले पछ पाव, एक वस्त कारण बिखोट गवाव। एक पीना दे दस पीहर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर सो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहु मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया। अगंत साहु अपनी दे रास, खात पीत बरत आनंद उलास। अपनी अमान कश बौर साहु ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बौर उसका विश्वास ना होवै। जिसकी बस्त से आज्ञा रख, प्रभु की आज्ञा मन मथ। उसते चौगन कर निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया सिव रंग लावै, ओह बिनसै ओह मन पछतावै। जो दिसै सो चालन हार, लपट रहो ता अंध अंधार। वटाउ सो जो लावै ने, ताकौ हाथ न आवै के। मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आप लै लाई। मिथ्या तान तान कुटुंब सबाया, मिथ्या होम ममता माया। मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत सद की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन, मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरा। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को थव, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पय, सफल दे नानक हर हर नाम ले। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कहु बस सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावत, ताक दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाये, मेघ बिना जो खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारत दाम। तन तन ते जन जिज कट बस्यो हर नाव, नानक ताक बल बल जाओ। रहत अवर का शबर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों का नलावत। जानन हर प्रभु पर भीन, बाहर पेख न काहू पीन। अवर उपदेसा आप ना कर, आवत जावत जन्म मर। जिसका अंतर बस निरंकार, तिसकी सीख तर संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पर ब्रह्म सब जन, अपना किया आप मन। आप आप आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाम स्यानप सगल ते रहत, सब कह जाना आत्म की रहत। जिस भावै तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रह समाय। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जाप नानक हरी। श्लोक

अश्वरि जब आकार कृष्णा दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर प्रभु किस संग कुमार जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक सोग को किसे ब्यापत जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेल आप भरती जा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल तरनी जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एक हर गम पार तब नरक स्वर्ग को कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए तब से शब्द कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तरे तब कवन निडर कवन कद डरे आपन चल तब करने हार नानक ठाकर गम अपार अविनाशी सुख आपने आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचरे अगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही चर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पद होता तै बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निहंकार निर्वाण तै कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै शल शिदर लगत कहो कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तै किसे भू कवन त्रिपतावै करन करावन करने हार नानक करते का नहीं सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला आपे परवीन तै भेद कतेब का कुचीन जब अपन आप उरतार तो सगन अप सगन कहाँ विचार जय अपन ऊच अपने अपनेरा तै कौन ठाकर कौन कही है चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय शल शेद भेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश ते गुण का ना ही प्रवेश जय एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपन आप पतियारा तै कौन कदे कौन सुनने हारा बहु व्यंति उचते उचा नानक आपस को

उनकी शोभा उनहु बनी। आपे कौतुक करे नंद चोज, आपे रस भोगन निर्जोग। जिस भावै तिस आपन नाय लावै, तिस भावै तिस खेल।

माय चार कुंट दै दिशे समाय तिस्ते पिन नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत में देख शशिर सूर नखत्र में एक वाणी प्रभु की सब को बोले आप डोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार दियो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन में ए विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्मा संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी ये रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पात तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एक अंकार अनक कला लखी नहीं जाए जिस पावे सलहे मलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आपे आप भरपूर अंतर गाश आप जनाए नानक ते जन नानक ते जन आप बजाए सर्वभूत आप वरतारा सर्वनैन आपे खनहारा सगल समगरी जाका तना आपन जस आप ही सुना आपन जान युग खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सबके माद अलिप्त हो रहे जो कुछ कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लहे समाए इससे हुए सो नाही बुरा उरे कहो किने कश करा आप ला कर तू तदनी की आपे जाने अपने जी की आप साज तारी सब साज ओत पोत अपन संगराज ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए तसु जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक ये जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का एह स्वभाव जन के संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार श्लोक

अष्टपदी पूरे गुर का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आसन त्यागो तरंग संत जनांगी धूर मन मंग आप छोड़ बिनती करो साध संग अगन सागर तरहो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरे लोका निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाद वाजे सुन सुन नंद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महांत के माथे नानक उदर है तिन कह साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आ मिलाए मिट गए बैर पय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूरन होई सेव की सेव आल जंजाल बकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्त करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान और न होवे आवन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मत सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् कहबेता समदर्शी एक दिष्टेता ए फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमर शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट प्रास साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्त

सुखमनी सबते उचता की शोभावनी नानक गुण नाम सुखमनी सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सोई सुगड़ सो जाने तेन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद निकी खटानी जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बहुत तेरे तेन तेल नहीं कीमत जानी रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गोर दीनो मंतानी डिगे ना डोले दृढ़ कर रहे हो पूरन होए त्रिपतानी ओए जो बीच हम तुम कश होते तेन की बात बिलानी अलंकार मेल थली होई है ताते कनक वखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक नेचल कर बांधो गोर कियो बंधानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी।

0: परम सत्कार जो गुरु प्यारी साध संग जी शामा दे दवाना विच तुसी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी चरण शरण विच बैठे हो, जिथे प्रतख गुरु दे दर्शन कर रहे हो। क्योंकि सिख नूं इह लालसा नहीं है वी मैं गुरु दे दर्शन करने, गुरु दे ते चरणां च आपां बैठे हां। बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, क्योंकि बाणी ही गुरु है, शब्द गुरु है। आओ सारी संगत झुकाओ शीस गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां च, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: सतगुरु कृपा करे तुहाडी सारयां दी हाजरी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपने दर कर प्रवान करन, चढ़दी कला वाला जीवन बख्शिश करन। इतिहास के बरके असीं सवेरे आरंभ किए सी वी चौधरी नथे की बहादरी, पिंड मीराकोट, वो पिंड है भाई महताब सिंह भंगू का, जिन्हें मस्से रंगड़ का सिर बढ़ के बीकानेर लैके गए। ये नाल का सिंह है सुखा सिंह कंबोकियां की माड़ी। ये सारा पिंड कबूआ का, एक कला ही कबो पिंड वा। 100 सिपाही नाल लैके नूरदीन मीराकोट की साथ में आके बह गया। सारे पिंड नूं घेरा पाया होया, सारे पिंड नूं घेरा। चौधरी नथे खैरे नूं आवाज मारी, आवाज क्यों मारी? एक तां इलाके दा चौधरी इह, एक ने महताब सिंह भंगू नाल पग बटाईआ। जदों महताब सिंह भंगू पिंड छड के बीकानेर नूं गया सी अपने पुत बाल कराए दी बां, ये नथे खैरे दे हाथ फड़ा के गया सी। चौधरी देखी किते दगा ना कर जाई, बां फड़ी हुई दी लाज नमाई। नथे ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी का इतिहास बयान करके कहा सी कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने उन्हां दुखी ब्राह्मणा की बांह फड़ी सी, मैं उन्हां दा सेवादार हाँ, सिख हाँ। जिन्हों पंजाबी दा शायर कहिंदा वी दर आए सवाली नूं मोड़िए ना, बेड़ी किसे अंतारू दी रोड़िए ना, आके मन दी मौज अंदर शीशा किसे दे दिल दा तोड़िए ना, लख पत्थर जहान दे झल लईए जिहदी बांह फड़िए फिर छोड़िए ना। चौधरी नथे खैरा ने पक्का विश्वास करके कहा सी कि मेरे ते विश्वास कर, तेरे पुत बाल कराए दा मैं बाल बिंगा नहीं होण दिंदा। बाल कराए सिंह दा एक बार घर नूं गया चौधरी, 7 साल दा पुत सीधा ही जा पहुंचा महताब सिंह भंगू दे घर, बेड़ा कच्चा ते बच्चा खेल रहा, उहदे मूंह वल वेखिया, उन्हें चुकिया मथा चुमिया, पुत्रा सवाल खड़ गया आके, जां सरकार दे नाल बैर पावां ते जां तेनू सरकार दे हवाले कर दें। उधर दूजे पासे हर भगत निरंजनिया कह रहा भी जे महताब सिंह नहीं है उहदा पुत तां इत्थे ही है ना, पुत नूं मार के उहदे टोटे टोटे करके दरख्तां ते टंग देवो, महताब सिंह नूं पता लगू कि मरियां दा दुख की हुंदा। फिर दूजी बार फिर सद लिया चौधरी ने सथ विच, हुण सथ विच सद के ना दूजी बार चौधरी नथे ठहरे नूं एक नूरदीन जिहड़ा 100 घोड़ सवार नाल लैके आया, सारे पिंड नूं घेरा पाया, सथ विच बैठा एक चौधरी नूरदीन, ते चौधरी नूं मोहरे आ गल कहिंदा, सुनना की कह रिहा।

मत जीत। जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी, जो देह मती तित चेल, जन नानक के प्रा...

जय जय करे सब कोई। आसा महला चौथा, सत संगत मिलिए, हर साधु मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया घट चानण, ज्ञान अंधेरा जाए, हर जन नाचो हर हर त्याए। ऐसे संत मिले मेरे भाई, हम जन के धोवै पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे, अन दिन हर लिव लाए। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर भूख न लागे आए।

ने ए लोग अजाना रहाओ सुहाग हमारो अब हुण सोयो कंत मिलयो मेरो सब दुख जोहयो आंगन मेरे शोभा चंद निस्बा सुर प्रे संग आनंद बस्त्र हमारे रंग चलूल सगलिया परन शोभा कंठ फूल प्रे देख पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान सगल सद खुशियां सद रंग माणे नौ निध नाम गृह मैं तृपताने कहो नानक जो पिरै शिंगारी थिर सुहागण संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उन मुकर परना जित दर तुम है ब्राह्मण जाना तित दर तू ही है पशुताना ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई निरापरा चित में बुरियाई रहाओ अंतर लो फिरें हलकाए निंदा करें सिर भार उठाए माया मूठा चेतै नाही भरमे पूला बहुती राही बाहर भेख करें कनेरे अंतर बिखिया उतरी घेरे अवर उपदेशे आप न बूझे ऐसा ब्राह्मण कहीं न सीजे

छोड़ गुरु चरणी लाग आसा महला पंजवा। दुख रोग भय गत तन ते मन निर्मल हर हर गुण गाए। भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए। तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलयो सहज सुभाए रहाओ। धावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब निःचल थाए। जगतो धारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए।

षडाय जाको दृष्ट मया हर राय साबंदी ते लय षडाय साध संग मिल हर रस पाया।

मन एक वस्त बुझै ताहू मैं पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुरु कौ कुरबान, जिसते पाइय हर पुरख सुजान। आसा महला पंजवा एक तुके चौपदे, एक घड़ी दिन स मुक बहुत दिहारे। मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिन स मोको कब हूं ना बिहावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको पिरे मिलावे। रहाऊ चार पहर चौं जुगां समाने, रैन पई तबंत ना जाने। पंच दूत मिल पिरो विछोड़ी, भ्रम भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। सा महला पंजवां।

रहाउ त्रिवती अगावन साचै नाए। अड़सठ मज्जन संत तूरा आए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़े अभिमान नानको गुर दीनो दान। आसा महला पंजवा बुद्ध प्रगाश भई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त घोर अंध कूप मैं निकसियो मेरे भाई रे रहाओ। महा अगा अगन का सागर गुरबोहित तारे रतनागर दुतार अंध बिखमे माया गुरपुरै प्रगट मार्ग दिखाया।

सब जी संहारे, एको एक आप एक एक है, एके है सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम त्याए बहुत उधारे। गैर गंभीर बेअंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक, त्याए त्याए प्रभ को नमस्कार। आसा महला पंजवां,

तुझै मझार, मेरे सतगुरु अपने बालक राखो लीला धार, दे समत सदा गुण गावा, मेरे ठाकुर गामे पार रहाओ जैसे।

जगनार, पर धन, पर दारा, पर निंदा, इन स्यो प्रीत निवार। चरण कमल सेवी हृदय अंतर, गुरपुरै कै आधार। गृह मंदिर महला जो दिसै ना कोई शंगा संगार। जब लग जीवै कली काल मैं जन नानक नाम समार। आसा कर तीजा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलक जोबन गृह शोभा, रूपवंत जोवानी। बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े, लाल लाख बयानी। आगै दरगा काम न आवै, छोड़ चले अभिमानी। काहे एक बिना चित लाइय, उठत बैठत सोवत जागत, सदा सदा हर त्याय रहाओ। महा बिच

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता करने हार न जाने, उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी ज्यों हस्ती खाक शाने, संत साजन सुनो सब मीता झूठा ए पसारा, मेरी मेरी कर कर डूबे खपखा मुए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा। रागासा घर पंजवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, भ्रमै सोई सगल जगत धंद अंध को जागे हर जन, महा मोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण को त्यागे विरला, चरण कमलिया नूपहार संत मंत को लागे साधु, नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वडभागीए कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर शेवा महला पंजवा,

जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना, संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रुड़ाई आसा। महला पंजवा, बाहर धोए अंतर मन मैड़ा, दोए ठौर अपने खोए, इहां काम क्रोध मोह व्यापिया, आगे मुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरई, नाम न सुनई डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार न जाने, वेद शास्त्र को तरकण लागा, तत जोग ना पछाने, उगर गया जैसा खोटा, टबुआ नदर शराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छपाया, कूड़ कपट बंच नी मुनि आदा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जना ले वसगत राखे, मन में एकंकार, तेरा जन निरत करे गुण गावे, रवा पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावे रहाओ, प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाचे अवर रिजावे, राम नाम जप हिरदे जापे, मुखते सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे, संत धूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पीखे लाए शरदा, तांका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे। आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्राह्मणी, सूदी ते सृष्टा ईरे, पातालनी आकाशी सखनी, लैबर बूजी खाई रे, घर की बिलाई अवर सिखाई, मूसा देख डराई रे, अज कै वस गुर की नो केहर, कुकर तिने लगाई रे, रहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया, नी करिया कर पाया रे, बिन जड़िए लै जड़ियो जड़ावा, थेवा चर जलाया रे, दादी दाद न पहुंच नहारा, चूपी निरनो पाया रे, माल दलीचे बैठी लै मृतक, नैन दिखालन ताया रे, सोई जान कह मैं जाना, जानन हार नशाना रे, कहो नानक गुरु अमियो पियाया, रसक रसक बिगसाना रे। आसा महला पंजवा, बंधन काट बिसारे अवगण, अपना बिरद समारिया, होए कृपाल मात पित न्याई, बारक ज्यों प्रतपारिया, गुरसिख राखे गुर गोपाल, काट लिए महापव जलते, अपनी नदर निहार रहाओ, जा कै सिमरन जमते छुट्टी है, हलत पलत सुख पाइय, सास ग्रास जपो जबर सना, नीत नीत गुण गाइय, भगत प्रेम परम पद पाया, साध संग दुख नाठे, छिजै न जाए किश पौ ना ब्यापे, हर तन निर्मल गांठे, अत अंत काल प्रपय सहाई, इत उतराखण हारे, प्राण मीत हीत तन मेरे, नानक सद बलिहारे। आसा महला पंजवा, जा तू साहिब ता पौ केहा, हों तुद बिन केसा लाही, एक तू ता सब किश है, मैं तुद बिन दूजा नाही, बाबा बिख देखिया संसार, रखिया करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार हाओ, जाने बिरथा सबा मन की, होर किस पै आख सुनाई है, विण नाम है सब जग बोराया, नाम मिले सुख पाई है, क्या कही है किसे आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब किश कीता तेरा वरत है, सदा सदा तेरी आस, जे दे वड़े आई ता तेरी वड़े आई,
इत उत तुझे त्याओ नानक के प्रभ सदा सुख दाते मैं तान तेरा एक नाव आसा महला पंजवा अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर ए महारस जने पियो जन्म जन्म चूके बैपारे दुर्त बिनाश्यो परम बियो दर्शन पेखत मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुमरी कृपा ते भयो साध संग एक काज तुम्हें आप कियो दृढ़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई खियो सुख निदान नाम प्रभ तुमरा ए अवनाश

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करणे सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सबतान सच्चे सबजूर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमै सो कचन कच महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जा नहीं चलथाओ वड्डी वड्याई जाने आ लाओ।

बड़ी सेव की संतोख ही जिन्हें सच्चो सत्य आया उन्नी मंदे पैन रखे उनका सके धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदरान पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला निते बैठने सवाया बड़ी आई वड्डा पाया बड़ी आई वड्डा पाया।

कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पैनरहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता, किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा, कूड़ माख्यों, कूड़ डोबैपुर, नानक।

का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुंजत संजय करे प्यार तरमी तरम करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छट बह कर बार सबको बुरा पे होवे घट न कोई आखे पत परवा।

कहे सितंबर स्वामी सचमा छह साज रहे सबको ससमावे। रे कहे रहे प्रभु उरदा राम नाम देवा मैं सूर नायले प्राश्त जाए नानक तो मुखंतर पाए। जुज महजोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिदरा मन में रंग किया। कल में वेद अथर बन हुआ नाव खुदाई अल्लो भया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद होए सजियार पढ़े गुण तिन चार विचार भाव भगत कर नीच सदाए तो नान

0: आपको ऊपर कोने में ना कोई तर तराजू तो लिया नवै सुगोरा होई अपराधी दुणा नवै जो हंता मृगाय शीश नवै क्या थी जा हृदय सुते जाय महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिर पूज सबगल समादंग मुख झूठ पे भोगण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक ललाटंग।

0: पहला। गऊ ब्राह्मण को करलावे गो बर्तन न जाए, धोती टिका तै जप माले तान मलेशा खाई, आंतर पूजा पड़े कतबा संजम तुरका पाई, छोड़ी ले पखंडा नाम लिए जाए तिरंगा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवास श्री भगवान तिन गलता, तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना बियावा ओई साध, कुड़ी राज कुड़ा व्यापार कुड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कुड़ रहा भरपूर, मत्थे टिका तेड़ धोती खाई, हाथ श्री जगत कसाई, नील वस्त्र पैर हुए प्रवान, मलेश धानले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना, देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़े यार, मत फिटे वे मत फिटे अन असाडा फिटे, तन फिटे फेड करेन, मन जूठे चुली परेन, कौन

पौड़ी चक लगे चकरी जे चले खसमे पाए हुरमत इसनो अगली वजो पिदो ना खाए खसमे करे बराबरी फिर क्या ते अंदर पाए वजो कोई अगला मोह पाना खाए।

जी की पावन हजूरी विच आसा की वार दे कीर्तन होए सतगुरु समुचियां सेवावां निभाउंदिआं होईआं भुल्लां दी खिमा बख्शणी अगे तों समत बख्शणी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दाराई संगत दे हिरदिआं ते वसाउणा संगत दियां तिल फुल भेटावां सेवावां दर ते प्रवान करनिआं सभनां नूं चढ़दिआं कला तंदुरुस्तियां बख्शनियां समूह परिवारां दे सिर उत्ते मेर भरिया हथ रखना प्रेम प्यार एकता इतफाक दियां दातां बख्शनियां देसां प्रदेशां विच आप अंग संग सहाई होना ऐस वेले आप जी के हजूर समूह संगत वल्लों कड़ा प्रसाद की देग सज के हाजर है दर ते प्रवान होवे करो कृपा अपना इलाही फरमान बख्श के कृतार्थ करो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया पही अकाल की तबै चलायो सब।

रतन पदार्थ वणजीए, सतगुरु दिया बुझाई राम, लाहा लाभ हर भगत है, गुण मह गुणी समाई राम। रतन पदार्थ वणजीए,

कबीर जी पंच पदे। ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूर्व जन्म हो तप का हीना, अब कहु राम कवन गत मोरी, तजीले बनारस मत पही थोरी। अब कहो राम कवन गत मोरी, तजीले बनारस मत पही थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया।

जपनी राव हर माला और अंतर तारे जमरण का दुख निवारे हृदय संभाले मुख हर हर बोले सो जने तुद कथे न डोले को नानक जो रचे नाही हर माला ताके संग जाई ऐसा मन लपनिमा जिसका सबके तिसका हुई ते जन लेपना व्यापे कोई हर खा सेवक सद ही मुक्ता जो कुछ करे सोई पहल जन कह अत निर्मल दास की जुगता रहाउ सगल दया कर सरणी आया ते जन कहा व्यापे माया नाम निधान जाके मन माही तिसको चिंता सुपने नाही कहो नानक गुरपुरा पाया प्रमो सगल बिन साया सामला पंजवा

शरण गही प्रभुगुण गहरा रहाउ तू मेरा जीवन तू आधार तुझे पे कभी सकोलार।

ஆயதனி அரஹாவு நாம் திருடாயா சாது கிருபாலு மெடுகை பூகமாம்பிகராலு ठाकुर अपने गिनी दात जरण पुजी मन हुई सात मिट गई पाल मन सहज समना नानक पाया नाम के जना समलभ निवा

देवन को। रहाउ जाके तनी अगम गसाई, मानिकी को केत चलाई, जाकी सेवा दास अष्ट सिदाई। पलक दृष्ट ताकी लागु भाई, जाकू दया करो मेरे स्वामी, तम मेरे कहो नानक। जाको दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही दिन गामी। आसा महला पंजवा, जो मैं अपना सतगुरु ध्याया, तम मेरे मन मानसक पाया, मिट गई गणत विनास्यो संसार। राम रति जन पय भगवंता, रहाओ जो मैं अपना साहिब जीत, तो पोह मिट्यो मेरे मीत।

गुरमुख नाम लगे से सोया, वार्थ नेम करता के पने चरणा, तड़ तीर्थ पवै सब तरणा। से उबरे जे सतगुर की शरणा, माया मोहे सब जग बाधा, हमें पचै मन मुख मूराखा।

निधावे को गुरदीनो धान, निमाने को गुरदीनो मान, बंधन काट सेवक राखे, अमृत बाणी रसना जाके।

लाख भगत राधे जपते पियो पियो कवन जुगत में लावो निर्गुण बिखी जियो। तेरी टे गोविंद गोपाल दयाल प्रभु तू सबना के नाद तेरी सृष्ट सब रहाओ।

राखण हारा पार राखे अगन माही शीतल हरण नाम सिमरत तपत जाय सुख सहज आनंद कणा नानक जन तूरा कर सगले सिद्ध पे भेटिया गुरपुरा आसा महला पंजवा गोविंद गुणी निधान गुरमुख जानी है होए कृपाल दयार हरंग माणी है आओ संत मिलार कथा कहानिया आनंदन सिमरै नाम तज लाज लुकानिया रहाउ जब जब जीवा नाम होवै आनंद घणा मिथ्या मोह संसार झूठा विनसना चरण कमल संग नेहो किने विरले लाया धन सुहावा मुख जिन हर ध्याया जन्म मरण काल सिमरत मिट जावे नानक सुख सोए जो प्रभावे आसा महला पंजवा आवो मीत एकत्र होए रास का सब पुंचै अमृत नाम हर हर जपै मिल पापा मुंचै तात विचार संत जनो ताते बिगन न लागै खीण भय सब तस्कर गुरमुख जन जागै रहाउ।

निकी जी की है, निकी जी की हर कथा उत्तम थान सगल रस पीकी रे रहाउ। बहु गुण तन मन जन खट बेते अवर ना किछ लाइकी रे। भिखारी निरारी अपारी सजारी सासंग नानक पीकी रे। असम लपजवा हमारी प्यारी अमृतारी घोर निमुख नामन ते टारी रे। रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रगी करतारी रे। खिन राम गुर गम हर दम न जम हर कंठ नानक हरी रे। असम लपजवा निकी सास गानी रहाओ पैर मूर्त पर गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी।

चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार, कर कृपा प्रपार ब्रह्म गुण तेरा जस गाऊं। सर्व सुख बड़ी बड़ियाई जब जी वह नानक नाम, समला पंजमा उदम करो करावे ठाकुर पेख साधु संग।

कर कृपा वसु मेरे हृदय हुई साई आप सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभेखन का जाऊ।

एक सिमर मन माही रहाउ नाम त्यावे दिव साव तिस बिन को नाही प्रभु सरणी पाई है सरपल पाई है सगले दुख जाही दियन को दाता प्रग विधाता नानक खड़गड़ आही।

पंकज मोर सरहा पग नहीं चले हरहा गहड्यो मूड़ नरहा आनन उपाव करहा बिनसै सरण पैरी सखी थिर थिर चेत थिर हाँ बन गृह समसरहा।

मना असव रिमला पंजमा एक कोट गोहा गुर का चरत कोहा आज्ञा सत सोहा मन निदान लोहा सुख समाय मेरे मना रहाओ जीवित जो मरे हाँ दुतर दो तरे हाँ सब की रैन होए हाँ निरपो को सोए हाँ मिट्या देसिया हाँ संत उपदेसिया हाँ संत उपदेसिया मेरे मना जैस मन नाम सुख हाँ तिस निकलना का दे दुख हाँ जो हर हर जसने हाँ सब को तिस मने हाँ सवल सुवाया हाँ नानक प्रपाया मेरे मना सवरी महला पंजवा मेरा हर जद गाई हाँ परमपद पाई हाँ वा रस जो पिदे हाँ ताको सगल सिदे हाँ

कारण करण दोहा अवरना सुजय मोहा करे सो ये हा सहज सुख सुहा तीरज मन पे हा प्रभु कै दर पे मेरे मना रहाओ साधु संग में पूरा पूर्ण संज में हा।

pues lo son verdad que sabe que ve verdad dita hui que me te pae na que ya jai कहने वाली तेरी रही समाई वटे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुण गहीरा कोई न जाना तेरा किता केवड़ चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कह न जाई तेरी तिल वडियाई सब सत सब तप सब चंगियाइया सिद्धा पुरखां कियां वडियाइया तुध बिन सिद्धि किनै ना पाइया करम मिलै ना ही ठाक रहैया आखन वाला क्या बेचारा सिफती परे तेरे भंडारा जिस तू देह तसै क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा महला पहला आखां जीवां बिसरै मर जाओ आखण औखा सचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चलिया दूख सो क्यों बिसरै मेरी माए साचा साहिब साचा नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखन पाहे बड़ा ना होवै काट न जाए ना ओह मरै ना होवै सोग देंदा रह ना चूकै भोग गुण एहो होर ना ही कोय ना को हुआ ना को होए जे वड आप ते वड तेरी दात जिन दिन करकै कीती रात खसम विसारह ते कमजात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हार के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रै रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपतासा मिल संगत गुण परगास जिन हार हार हर रस नाम ना पाया ते पागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितवै उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मै जंतु पाए ताका रिजक आगै कर धरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किस की धरिया सिर से रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भउ करिया ऊडे ऊड आवा सै कोसा तिस पाछै बचरे शरिया तिन कवन खलावा कवन चुगावा मन मै सिमरन करिया साबन दान दास अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइय तेरा अंत ना पारा भरिया राग असा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमह अगमे अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सृजनहारा
ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤੋਹੁ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਯੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ